ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026 सुबह के 5:54 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर पांच मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। सात बजे हिंदी में समाचार, सात बजकर पांच मिनट से लेकर नौ बजे तक सुनना मत भूलिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। नौ बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। दस बजे हिंदी में समाचार, दस बजकर पांच मिनट पर सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। ग्यारह बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, विषय रहेगा आम चर्चा खास पहचान। 12 बजे हिंदी में समाचार, 12 बजकर 5 मिनट पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा प्ले इट कूल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: FM Tragoban
3: 103 MHz।
2: News, music and entertainment।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आपको पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार की विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के

0: बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: का कोई मॉडल पुराना लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी।
2: प्रोग्राम तो आपको हुनी बोल रहा हूँ कि लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम लगावस्ते फिल्म से एक दूजे के लिए गीत लिखे हुए आनंद बख्शी, म्यूजिक दिया हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यो गीत हुनेले अपनी श्रेया घोषाल और सोनू निगम लगवास्ते फिल्म थी से बेशरम गीत लिखा हुई से निखत खान और म्यूजिक दिया हुई से ललित पंडित प्रोग्राम टेको हुनी वो अभिजीत और श्रेया घोषाल लगवास्ते फिल्म से मैं हूं ना गीत लिखा हुई से जावेद अख्तर और म्यूजिक दिया हुई से अनु मलिक

वाले तो गीत में लुआ विषय अपने लोग के उदित नारायण और कोरस लगा हुआ स्टे फिल्म था कि से दिल गीत लेके आए विषय शमील और म्यूजिक डियर से अनंत मिलन प्रोग्राम टू आपको उन्हें वो अपने लोग के अभिजीत और कोरस लगा हुआ स्टे फिल्म से चलते चलते गीत लेके आए विषय जो विदाक्तर और म्यूजिक डियर से जतिन ललित किंतु हम वही बार वजह 30 मिनट हो लगे अपनी गान होने हो वो न्यूज हेडलाइंस तापस ले आपको प्रोग्राम टू कंटिन्यू करा हो दैट इज आरजे चॉइस हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसके बारे में थोड़ी ही देर पहले अभी आप गुफ्तगु सुन रहे थे, और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार, और इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी रविवार की ये जो दोपहर होती है वो अपने आप में खास होती है, क्योंकि आप बाकी दिनों की तुलना में इस दिन होते हैं थोड़े रिलैक्स्ड, आराम से 1 बजे लंच करते हैं, और लंच के दौरान आप लगातार जो बातें अपनी करते ही रहते हैं। और हम तो आपके साथ होते ही हैं 2400 घंटे अपनी बातें लेकर, कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग जानकारियां लेकर, और गीत आपकी पसंद के इस प्रोग्राम में तो आप तक पहुंचते ही हैं। लेकिन कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हरदम हमारे अंदर एक भूख होती है कुछ नया करने की, एक ऐसी चाह जो कभी खत्म नहीं होती है। इंसान को यही चाह साधारण से असाधारण बनाती है, और यही वो भावना है जो हमें हर सुबह एक नए उत्साह के साथ जगाती है और जीवन को केवल जीने के बजाय उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। तो क्या नया करते हैं आप, या क्या नया ऐसा है जो आप लगातार ट्राई करते हैं? कई बार होता है ना कि ऐसा हम सोचते हैं कि क्या नया, नया हर जगह हो सकता है। मसलन जो हम काम करते हैं हम उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या ऐसी नई चीज़ हम डालें जो हमारा काम बेहतर हो। अब जैसे खिलाड़ी हैं, देखिए एथलीट्स हैं, लगातार दौड़ते हैं हर समय ये ट्राई करते हैं कि पिछली बार जो समय निकाला था उससे बेहतर समय निकाले। कुछ इसी तरह से हम जो भी काम करते हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश हमारी होती है, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएं। कई बार ये होता है कि इन कोशिशों में सारी बातें आप तक नहीं पहुँचती, लेकिन एक चीज़ है जो पहुँचती है और वो ये है कि आपकी पसंद के गीत। तो आपको बता दें कि आप इस प्रोग्राम में अपनी पसंद के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी पसंद अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9868107070 9868107070। और आपका स्वागत करता हूं मैं इस गीत के साथ।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और मेरे साथ है बहुत सारे हमारे साथी जो व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातें, अपनी पसंद के गीत और उनसे जुड़ी हुई कुछ और दिलचस्प बातें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे बात कर रहे थे कि कुछ नया करने की जो हमारी चाह होती है वो हमें बनाती है खास, क्योंकि जब हम अपने काम को और भी अच्छे स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उत्कृष्टता की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो फिर हमारा काम बेहतर होता चला जाता है और हरदम कुछ नया करने की जो हमारी चाह है, जो भूख है, वो भी शांत होती रहती है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ नई चीज़ें आप सभी तक पहुँचाएँ। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि क्या नया, क्या खास आपने भेजा है, आज हमारे साथ साझा किया है। तो जैसे ही एक बजा तब से ही आपके मैसेजेस जो है लगातार हम तक पहुंचने शुरू हो गए। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे कई दोस्तों ने हमारे साथ अपनी बातें साझा की और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाई। उनके नाम मैं बता देता हूं। नाम है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। इन्होंने मैसेज किया सबसे पहले और उसके बाद पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कहां पीछे रहने वाले, तो एकदम मैसेज लिख कर तैयार थे। जैसे ही एक बजा लंबा सा मैसेज इन्होंने भेज दिया और अपना जो मैसेज है उसमें उन्होंने बहुत सारे गीत भी हमें सजेस्ट किए कि ये गीत बजा सकते हैं, वो गीत बजा सकते हैं, और अच्छा लगा आपका ये मैसेज देख के। इसके अलावा सतरंग श्रोता परिवार के भी कई सदस्य हैं। अच्छा, सतरंग बुलाए, देखते हैं 7 लोग हैं कि नहीं। नहीं, 6 लोग हैं और 4 लोग उधर, 10 लोगों का ये मैसेज एक साथ आया है। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और अजय सोनवने, ये पुणावले पुणे से हैं, करिश्मा सोनवने, आविका सोनवने और विशाखा सोनवने, इन्होंने भी मैसेज किया है और अपनी बात लिखकर पहुंचाई है। हालांकि ये दोनों ही मैसेज हमें एक ही व्यक्ति द्वारा मिले हैं। इसके अलावा कविता टिहरी गढ़वाल से मैसेज लिखा, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। आपके इस गाने को मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज तो नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, किसी और दिन हम ढूंढेंगे और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हीरो नंबर 1 फिल्म से गाना सुनाने की ये फरमाइश की है जयराम।

खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल ने। इसके अलावा मैसेज भेजने वालों में हैं हमारे कुछ और साथी जिनके नाम है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनके साथ कई और लोग भी हैं, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ये सभी लोग हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि एक गाना सुनवाइए, और गाना भी क्या कमाल का था, क्या कमाल का है और क्या कमाल का रहेगा। और वो फिल्म भी बड़ी ही कमाल की थी, विश्वात्मा, और उस फिल्म का जो गाना आपने सुनना चाहा है

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक और सात समुंदर पार भी हम सुने जाते हैं, क्योंकि अपने मोबाइल पर जब आप हमारा रेडियो ऑन करते हैं ऐप के जरिए न्यूज ऑन एयर, तो हम आप तक लगातार पहुंचे होते हैं। कहीं भी आप रहें, हमारा और आपका साथ लगातार बना रहता है। और इस साथ को बनाने में हम तो लगातार आपके साथ होते हैं, लेकिन आप भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि आप लगातार मैसेज करते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते हैं। और जब हम आपसे कहते हैं कि क्या खास करते हैं, क्या नया प्रयास करते हैं, तो वो भी आप हमें बताते हैं कि हम ये नया कर रहे हैं। और नया करने की जो चाह है वो एक नई राह की तरफ हमें लेकर जाती है, और हम भी उस राह पर चल पड़े हैं। आपके मैसेजेस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखिए कि और आपने क्या क्या बातें लिखी हैं। गांव मलवाला जिला बठिंडा से बलराज सिंह मान और बलकार सिंह मान का मैसेज आया है। उन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। गुड्डू धाकड़ जी जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं बेडावन गाँव से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और इसके अलावा मैसेज भेजने वालों में हैं कई और हमारे साथी, जिनका नाम है राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा। इन्होंने मैसेज किया है हमें जम्मू और कश्मीर से, और इन्होंने कहा है कि किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो बिल्कुल जी, हमने इस प्रोग्राम में आपका नाम शामिल कर लिया है। और मैसेज किया है हमें, किसने भेजा है मैसेज, ये जनकपुरी नई दिल्ली से प्रदीप सलूजा और संगीता सलूजा जी ने, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं। आपने दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जैसे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जब अपनी बातें लिखकर पहुंचाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और साथी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ ने अपना मैसेज तो भेजा है लेकिन अपना नाम नहीं भेजा है। कोई बात नहीं, नाम नहीं भेजा है तो अगली बार जब आप मैसेज करें तो नाम भी जरूर भेजें, और कहां से आप हमें मैसेज कर रहे हैं वो भी जरूर भेजें। हमें अच्छा लगता है जानना कि देश के किस हिस्से से आप हमारे साथ जुड़े हो रहे हैं और अपनी बातें जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत रावत का ऋषिकेश से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और मैसेज भेजने वालों में है कुछ और हमारे साथी, मैं उनके नाम ढूंढ रहा हूँ और नाम जो है लगातार बता रहा हूँ। सो वी हैव अनदर मैसेज फ्रॉम जर्मनी एंड दैट इज फ्रॉम इला एंड सौरभ, और उन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। शुक्रिया दोस्त आपका इतनी दूर से हमें मैसेज करने के लिए और अपने आप को हमारे साथ जोड़ने के लिए। और हमारे साथी हैं सौरभ अनेजा गाजियाबाद से, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, मैं तो बस शो को इन्जॉय करता हूँ। और लगातार ये शो, ये इसी तरह से शो को इन्जॉय करते हुए हमें अपनी बातें लिखकर पहुँचाते हैं। और मैसेज भेजने वालों में हैं, इनका नाम है, आपका नाम है बागेश्वर निषाद गोरखपुर यूपी से, आपने मैसेज हमें पहुँचाया है और आपने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और साथ ही साथ कुछ और भी हमारे साथी हैं। इन साथियों के नाम भी होते हैं, नाम है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, और रामदेवरा से दिनेश चौहान, और डांगरी से बाबूराम जयपाल, साथ ही खलीफो की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है। और इन सभी लोगों ने मैसेज किया है और गाना सुनने की भी फरमाइश की है। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से इन्होंने शुभ दोपहरिया बोला है और लिखा है कि एक गाना है फिल्म दिलजले से, वो सुनवा दीजिए। तो दोस्त हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस गीत को आपने जो बोला है और उसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की भी कोशिश करेंगे। और अगला जो मैसेज है वो है एक बार फिर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। साथ ही साथ मैसेज किया है हमें, किसने मैसेज किया है भाई, नाम तो आपका दिख ही नहीं रहा है, राहत और गजल। अच्छा ये आपका नाम है, मुझे लगा आप कुछ और ही, मतलब किसी सिंगर का आपने नाम लिखा है, कुछ गजल सुनना चाहते, लेकिन अच्छा है। नेटा और बिजनौर यूपी से आपने ये मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। और अगला जो मैसेज है ये है आफसा खानम का, धामपुर जिले से, बिजनौर जिला, बिजनौर से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है, उत्तर प्रदेश से। पूछा है कैसे आप, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। तो आपकी फरमाइशें लगातार हम तक आ रही है और हम भी कहाँ पीछे, आपकी फरमाइशों पर आप तक गीत पहुँचा रहे हैं। ये लीजिए

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस फरमाइशी प्रोग्राम में जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुनते हैं और आपकी जो पसंद के गीत हमें मिलते हैं पहुंचते हैं हम तक वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचते हैं जो है 9868107070 9868107070। तो आप इस बीच क्या नया करने की आपकी लगातार चाह बनी रहती है कुछ इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हालांकि जो अभी तक मैसेजेस आए हैं कई बार हमारे कुछ साथी ये सोचते हैं कि उनका मैसेज नहीं है अब तक ऑन एयर किया गया है, तो वो इसलिए होता है कि दोस्त हम धीरे धीरे धीरे धीरे आपके मैसेज तक पहुँचते हैं और जब तक हम पहुँचे तब तक आप एक और मैसेज करते हैं और आपका मैसेज चला जाता है एकदम ऊपर और हमें उस तक पहुँचने में फिर थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपका मैसेज अब तक नहीं पहुँचा है तो थोड़ा सा सब्र करें। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। और हाँ, कई बार समय की वजह से आपकी पसंद के गीत ना भी चलें तो भी हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे गीत हम चलाएं जो आपकी पसंद के हैं और अधिक से अधिक गीतों को शामिल करें। लेकिन अगर नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, आपका नाम तो शामिल हो ही रहा है और आप हमें मालूम है कि समय की पाबंदियों को समझते हैं और समय ये कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
9: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और मेरे साथ हैं बहुत सारे लिसनर्स। चलिए पहले चलते हैं अपने लिसनर्स की तरफ, यानी कि उनके मैसेजेस की तरफ, और देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दिया है। मोहम्मद मिमशाद अली बिहार से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है, और हमारे कुछ और साथी हैं जो हमसे जुड़े हैं और बहुत ही प्यार से लिखा है। प्रिय प्रसारक जी, प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। लिखा है कि प्लीज एनी सॉन्ग। और ये धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। बहुत अच्छे, अच्छी बात है आपने लिखकर मैसेज हमें पहुंचाया, भेजा हम तक। मोनिका पौड़ी गढ़वाल से इनका भी मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और जैद और हुदा का भी मैसेज आया है गाजियाबाद से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और इसके अलावा मैसेज किया है विश्व ओम त्यागी ने मुरादनगर से, और मुरादनगर से ही गांव दूल्हापुर से भेजा है मैसेज हमें कई लोगों ने। उनके नाम मैं बता देता हूं, नाम कई हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, तो जी बिल्कुल ठीक है, आपको हमने पूरे प्रोग्राम में ही शामिल कर लिया है, गीत से ज़्यादा बढ़ के। और अगला मैसेज है कविता जी का, इनकी पसंद का गीत तो नहीं चला लेकिन इनका एक मैसेज है बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा है मैसेज में अपने कि देवभूमि उत्तराखंड अभी चारधाम यात्रा चल रही है, तो कृपया तीर्थ स्थल पर कूड़ा कचरा ना छोड़ें, किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। ये बात इन्होंने लिखकर हम तक पहुंचाई है। और अगला जो मैसेज है वो है, किसका है ये मैसेज? हाँ, डॉली का मैसेज है, दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि कैसे हैं आप, बहुत दिन बाद आए। हाँ, कई बार थोड़ा सा अंतराल हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े दिन के बाद आते हैं तो थोड़ा कहने के लिए बहुत कुछ होता है एक दूसरे के साथ। तो आपने भी कहा ये है कि कुछ नया करने का कुछ फिक्स नहीं होता है, बस जो भी करती हूँ ये सोच कर करती हूँ कि पहली बार कर रही हूँ, और आइडिया अपने आप आ जाता है। वाह वाह, क्या बात है, ये ज़रूरी है। कहते हैं ना कि कोई भी काम तब तक नहीं होता शुरू जब तक उसकी शुरुआत नहीं होती। एक बार हम शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उस काम को करने के, उसको सफल बनाने के रास्ते हमें मिलते रहते हैं। विवा का गोवा से मैसेज आया है, पूछा है कि आपका खाना हुआ है कि नहीं। बिल्कुल खा पी कर आए, और हमें उम्मीद है कि आप भी अब तक लंच जो है कर चुके होंगे। और दिल्ली में बारिश शुरू हो गई ऐसा पूछा है इन्होंने, तो दिल्ली में बारिश अभी मैं स्टूडियो के बाहर देख रहा हूँ तो थोड़ी धूप लग रही है। हाँ, ये धूप छाँव का खेल चल रहा है, बीच में दो दिन पहले

लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. नाम है आपका श्याम शंकर मौर्य, और ये हमने कहाँ से ढूंढा, आपके प्रोफाइल पिक के जस्ट नीचे लिखा हुआ था. तो कोई बात नहीं, आपने लिखा है अपने गाने की फरमाइश, और बिल्कुल दोस्त हम कोशिश करेंगे इसको ढूंढने की. और भी मैसेज है कई जिन्होंने हमें मैसेज तो भेजा बाद में लेकिन डिलीट भी कर दिया. पता नहीं क्यों डिलीट किया, क्या लिखा होगा. अब ये मैं सोचता रहूंगा, लेकिन सोचने से क्या होगा, करने से होगा. करते ये हैं कि अगला मैसेज हम शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में. और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से एक बार फिर से इनका मैसेज आया, और इन्होंने किसी बात के लिए धन्यवाद कहा, तो शुक्रिया दोस्त आपका भी. फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और तायरा का भी मैसेज आया है ऊपरकोट बुलंदशहर से, और कई हमारे और साथी इनके साथ, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार. ये सभी लोग मैसेज करके बोलते हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए. बिल्कुल जी, हमने शामिल कर लिया आपको. मेरठ से संजय बोल रहे हैं, लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और बोलने की स्पीड जो है थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही है, तो पत्नी मायके चली गई हैं तो ये जो है हमारी भी हाजिरी लगा लो, तो स्पीड ज़्यादा तो ठीक है दोस्त, मैं आपके लिए धीरे धीरे बोलता हूँ. पत्नी मायके चली गई हैं तो सारे घर के काम आपको खुद करने पड़ रहे होंगे, थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन ये जो वो समय है जब आपको आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि समय के साथ आत्मनिर्भर बनते हुए आप सभी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर. कंचन सोनिया विहार से लिखा है इन्होंने कि हमें मुस्कान मूवी का गाना सुनना है, ये गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की. तो दोस्त कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी इसलिए भी बोलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और अच्छा लगा कि आप लोग समय के साथ साथ फीडबैक देते हैं और हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश भी करते हैं. तो चलिए अब कोशिश हमारी ये है कि एक और फरमाइश आप तक पहुँचे, और वो जो फरमाइश है वो है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, और गाना जो आपने सुनने की फरमाइश की है वो है ये वाला.

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और अब समय है इस प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक और लेने का और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी जो बातें हम तक पहुंची है उनको हम और लोगों तक पहुंचाते हैं, साथ ही आपकी जो पसंद के गीत हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
9: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
10: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश और मेरे साथ है बहुत सारे हमारे साथी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजा है जोया ने और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। वैसे एक

बात आपकी जो आपने बताया ना कि मेलबर्न से आपने भेजा है, और आपकी बात से ही मुझे एक हमारी लिसनर है डॉली, उनकी बात याद आई कि उनका एक सपना है कि कभी वो सात समुंदर पार जाए। जब वो गाना सुन रही थी तो उनको लगा कि सात समुंदर पार कभी किसी दूसरे देश जाए और वहाँ से हमें मैसेज भेजे। तो एक तरह से कई बार क्या होता है कि जो हम कर रहे होते हैं वो किसी और का सपना हो सकता है, और बहुत सारे सपने हमें ऐसे भी होते हैं हमारे साथ कि हम उनको पूरा कर सकते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए बस थोड़े एफर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ नया करने की ज़रूरत होती है। तो वो नया करने की कोशिश लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैसेज है राधेश्याम शर्मा जी, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का है। इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है, और जिला पन्ना मध्य प्रदेश से कई साथी हैं हमारे, इन्होंने मैसेज भेजा है, सारा डिटेल भेज दिया इन्होंने फिल्म का, कैसे कैसे क्या है, किसने गाना लिखा था, और ये गाना सुनना भी इन्होंने चाहा है। हर्षवर्धन जी, ए के पांडे, इनका मैसेज आया है और लिखा है, किसने लिखा है मैसेज, ये दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी ने लिखा है कि हमने भेज दिया था मैसेज। तो दोस्त भेजा था आपने, लेकिन थोड़ा सा वेट करते तो हम ज़रूर आपके मैसेज तक पहुँचते। कई बार क्या होता है कि हम आप तक पहुँचे इससे पहले ही आपका मैसेज आ जाता है और हमसे आपसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, फिर हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जैसे हम पहुँच गए आपके पास, फिर से इसी तरह से हम पहुंचे जाते हैं आपके पास एक बार फिर से। और अगला जो मैसेज है वो है सुषमा का, दार्जिलिंग से रेगुलर लिसनर है हमारी, और इन्होंने के गाने की फरमाइश की थी, इनकी फरमाइश जो है वो पूरी भी हो चुकी है, और उसके बाद इनका एक बहुत ही प्यारा सा इमोजी भी आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला जो मैसेज है वो है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, नाम मिल गया, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा का मैसेज है, एक गाने की फरमाइश की है, और साथ ही साथ मैसेज हमें भेजा है हमारे कुछ और साथी हैं, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, इनका भी मैसेज आया है, हम तक पहुंचा है। और अगला जो लिखा है मैसेज, लिखा है इन्होंने, थोड़ा लिखा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं, आपका नाम है रामदेवरा से दिनेश चौहान जी। अच्छा, आपने दोबारा दोबारा से ये बातें लिखी, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, आपने प्यार भरा मैसेज जो हम तक पहुंचाया, हमने उस मैसेज को पूरा पढ़ा, और निश्चित रूप से आपके जो मैसेज हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें नई ऊर्जा देते हैं नया कुछ करने के लिए, लगातार आपके साथ बने रहने के लिए, कुछ और बातें आप तक पहुँचाने के लिए। अगला जो मैसेज है इनका नाम है इनका हरिकिरण सिंह जी, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, इन्होंने लगातार मैसेज अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैसेज हमारे साथ साझा करने के लिए, आपकी बात जो है हम तक पहुंच गई है। और मीनाक्षी का बिहारी कॉलोनी शाहदरा से मैसेज आया है, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है, साथ ही साथ मैसेज भेजा है हमें, किसने भेजा है, इनका नाम है आकांक्षा मुंबई से, इन्होंने लिखा है कि काफ़ी दिनों बाद आपको सुन के अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों बाद आप लोग एक बार फिर से प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, आप तो लगातार बने ही रहते हैं, लेकिन हाँ कई बार हम बीच में नहीं होते हैं, तो फिर जब आते हैं तो अच्छा लगता है आपकी बातें जो हम तक पहुँचती हैं, उनको पढ़कर, उनको जानकर, आपके बारे में जानकर। अगला जो मैसेज है इनका नाम है मनोज सिंह लाजवंती गार्डन से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है रोहिणी दिल्ली से है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इनका नाम है तवाब, और मैसेज किया है, किसने किया है दोस्त, आपके मैसेजेस दोबारा दोबारा भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर इन सभी चीज़ों को। नवलू वर्क मलपड़ गोवा से इन्होंने लिखा है, मैसेज हम भेजते हैं लगातार, मैसेज कई बार नहीं पढ़ा जाता, तो दोस्त कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी पढ़ा जाता है मैसेज, तो आप उसको बुरा ना माने, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा गीतों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, और इस कोशिश में अगर कई बार होता है ऐसा तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे इतने करीब हैं कि आप हमारी इन चीज़ों को दरकिनार करके आप हमें फिर से मैसेज करेंगे और अपनी बातें हम तक पहुंचाएंगे, और हम अगली बार आपके मैसेज को ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैसेज किया है किशन वंजानी, नीलम सौती और किशु ने, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और मैसेज भेजने वालों में कुछ और साथी हैं हमारे, इनका नाम है आपका नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, इन्होंने लिखा है, अपनी बात लिखकर पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं ना हमारे जिनका मैसेज ना आया तो लगता है कि कहाँ हैं ये लोग, तो इस तरह के हमारे ये भी हैं साथी जो लगातार अपनी बातें हम तक पहुँचाते हैं और अपनी बात लिखकर पहुँचाई है, अपनी पसंद का गाना सुनने की भी फरमाइश की है। सोनिया विहार दिल्ली से कंचन का भी मैसेज आया है। तो दोस्त अब समय है कि एक और गीत आप तक पहुँचाया जाए और उसके बाद वापस आया जाए आपकी कुछ और बातों को आप तक पहुंचाने के लिए।

दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनकी वाइब ही अलग होती है। मतलब ये गाना आप सुनते तो ऐसा लगता है कि ये कुछ अरेंज मैरिज का मामला है और इनको पता नहीं है कि कैसे होगी। इसके अलावा भी कई गाने ऐसे रहे हैं, जैसे एक गाना बहुत पहले आया था वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है, तो कुछ इसी तरह की फीलिंग्स देते हैं। खैर गाने से निकल कर हम वापस आते हैं आपके मैसेजेस की ओर आते हैं और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दी हैं। तो मैसेज जो भेजा है अगला ताहिर कुरैशी ने भेजा है, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। थोड़ा पुराना है लेकिन ठीक है, आपने ये गाना बोला है तो इस गाने को हम ढूंढेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और प्रमिला कर्नाटका से भी मैसेज इनका आया है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। सतवीर सैनी गौरव सैनी का बिजनौर से मैसेज आया है और मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं जिनका मैं जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। ओखला के संगम विहार से दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता का भी मैसेज आया है हमारे पास और मैसेज किया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से बहुत सारे हमारे साथी हैं, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार पुराना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का। अगला जो मैसेज है वो है अभिनव ध्यानी का और नीरज ध्यानी का, कोटद्वार गढ़वाल से, इन्होंने भी मैसेज किया है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और मैसेज किया है उमेश कुमार ने ख्याला से और लिखा है कि हमारा मैसेज कहाँ इग्नोर कर दिया। कहाँ इग्नोर किया दोस्त, जब तक हम आपके मैसेज तक पहुँचे आपका आप एक और मैसेज था और आपका मैसेज जो है वो और ऊपर चला गया। इसके अलावा मैसेज आया है, इनका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, अच्छा इनका नाम तो हमने शामिल कर लिया था, हरकिरण सिंह फर्रुखाबाद से इनका मैसेज आया था। और देवेंद्र इंगती का मैसेज आया है जिला कार्बी अंगलोंग असम से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैसेज भेजने वालों में हमारे साथ हैं हमारे साथी जी एस गिल पटियाला से, इन्होंने मैसेज भेजा है। और मैसेज भेजा है हमारे साथ राजेश भल्ला जी जो कि एडवोकेट हैं कंकरखेड़ा मेरठ से। बड़ा थोड़ा देर में आपने मैसेज भेजा है दोस्त, लेकिन आपने भेजा मैसेज, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगा आपका मैसेज देखकर। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और हमारे साथी हैं, मोहम्मद फुरकान, लगातार शिकायतों का दौर।

0: और चल रहा है दोस्त, थोड़ा सा इंतज़ार अगर आप कर लेना तो ये शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाए। देखिए, आपका प्रोग्राम में हमने मैसेज शामिल किया है और अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं, कई बार शिकायतें भी करते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो फिर ये शिकायतें दूर भी हो सकती हैं। इसके अलावा मैसेज भेजने वालों में कुछ और हमारे साथी हैं, जल्दी जल्दी उनका नाम ले लेते हैं क्योंकि समय अब जो है वो थोड़ा कम बचा हुआ है इस प्रोग्राम में। तो मैसेज जो है इनका नाम है मनोज सिंह, इन्होंने मैसेज किया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा लगता है, जब मैं काम से आता हूं तो एफएम रेनबो चलाता हूं, तो बहुत अच्छा करते हैं आप ये। तो और मैसेज भेजा है किसने, इनका नाम है नोएडा से योगेश, और मैसेज भेजा है किसने, इनका नाम है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और परिवार है। तो ये तो रहे हमारे वो साथी जिन्होंने मैसेज किया, कुछ लोगों के नाम हमने शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपका नाम शामिल नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नाराज मत होइए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैसेज हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो आपसे थोड़ी देर बाद जो प्रोग्राम लेकर आएंगे वो है गीतिका उनियाल, प्रोग्राम छोटे उस्ताद में बहुत सारी बातें आपसे वो करने वाली हैं और आप उनकी बातचीत सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल राजेश को दीजिए अनुमति, और चलते चलते एक और जो मैसेज आया है वो अनुज कुमार का, सुनीत कुमार का, दिनेश कुमार, उमेश कुमार, अच्छा इनका नाम रह गया था, इन्होंने ख्याल से मैसेज भेजा है, तो आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और अब वो वाला गाना जिसकी फरमाइश की है हमारे एक साथी ने, और वो गाना थोड़ा सा पुराना है, लेकिन कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, और ये गाना थोड़ा सा सुनने को कम मिलता है, तो हमने सोचा कि चलिए इसको हम बिल्कुल आखिर में आप तक पहुंचाएंगे, और वो गाना जो है वो अब हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो इस गाने के साथ ही राजेश को दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर जिसका नाम है 102.6 एफएम रेनबो। चलते चलते ये गीत आपके लिए, नमस्कार।
1: है दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम। आपके आशियाने में रह गुजर है उन छोटे छोटे परिंदों की जिनको आप उड़ना सिखा रहे हैं, और जब एक दिन वो उड़ना सीख जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि आपके छोटे छोटे उस्ताद अब उड़ान भरने लगे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आपसे आज साझा करूंगी बड़े ही कमाल की बात कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं सोचते, कितने बड़े बड़े सपने हम खुद पिरोते हैं अपने हाथों से। लेकिन कहते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक पहल, हर एक कदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले बच्चों का खान पान और उनका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। तो चांद की तरह चमकेंगे हमारे घर के उस्ताद, खास तौर पर तब जब हम उनका रखेंगे ख्याल।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल और प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त छोटे उस्ताद, आपके घर के उस्ताद, यानी कि छोटे उस्ताद आपके जीवन में एक खासा जगह रखते हैं, एक अलग मुकाम, एक अलग पायदान पर आपने उन्हें रखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो आप हर बात को एक जिम्मेदारी समझ लेते हैं और आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे का भाग्य निश्चित रूप से आप द्वारा ही निर्मित होना है। किस तरह की परवरिश बच्चे को दी जाए, किस तरह की पढ़ाई, कौन से स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, किस तरह के कपड़े बच्चे पहने, कैसा उनका आचार व्यवहार हो, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज के युग में बना हुआ है ज्यादातर अभिभावकों के साथ, वो ये बच्चों का खान पान। बच्चों का खान पान हमारी लाइफस्टाइल की वजह से काफी बदल गया है। एक वक्त होता था जब बच्चे 3 वक्त का आहार लेते थे, वो भी पौष्टिक आहार, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। एक तो ये कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और हम हमेशा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि पेट भर लिया जाए, खाना खा लिया जाए, चाहे जो भी मिले। अब जब इस आदत का शुमार हमने कर लिया है कि कुछ भी खा लिया जाए, समय नहीं है बहुत से लोगों के पास कि वो घर पर एक बैलेंस्ड डाइट मील बना सकें, तो ऐसे में बच्चों को भी वही परोसा जाता है जो माता पिता खाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब अर्ली और डेवलपिंग ईयर्स होते हैं बच्चों के, तो उस वक्त पौष्टिक आहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसको नज़रअंदाज करने का अर्थ ये है कि आने वाला कल इन बच्चों का खतरे में हो सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ये ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि जीवन के उस पड़ाव में जब शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए था, तब हमने पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जूसेस देकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, उनकी सोच को बिगाड़ दिया, उनके मन को बिगाड़ दिया। तो क्यों है महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार और कैसे हम पौष्टिक आहार को रोज़मर्रा की जीवन में शामिल करें, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे को भी उचित आहार मिले। तो आप मेरे साथ गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका कौनियाल। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर छोटे उस्ताद।

भाई हम तो यही कहेंगी कि आपके घर के बच्चे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत प्यारे हैं आपके लिए, और क्योंकि आप जानते हैं और आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपका बच्चा कल चलकर किसी मुकाम पर पहुंचे। पर हम यही कहेंगे कि हर वो संस्कार जो घर में प्राप्त होता है उसी लेगेसी को बच्चा आगे लेकर चलता है, चाहे फिर वो अच्छा खाने की आदत ही क्यों ना हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा खाना क्या होता है, क्या हम चाट पकौड़े ना खाएं, क्या हम अपनी जीभ को सुख ना दें, क्या हम तमाम व्यंजनों का स्वाद ले ये महसूस ना करें कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम कुछ भी खाएं, हम खाएं सब कुछ लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यवस्थित कर लें। कहते हैं कि हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, हमारे बच्चे हमसे वही सीखते हैं और वही कहते और करते हैं, और ये बात हमारे खान पान पर भी लागू होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम जो उसे खिलाते हैं वो वही खाता है, क्योंकि बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। जब बच्चा स्वाद लेना शुरू करता है, खाना शुरू करता है, तो हम उसे अलग अलग चीज़ें खिलाकर ये आभास दिलाते हैं कि स्वाद कैसा है। दूध पीते बच्चे को दूध पिलाकर खुश किया जा सकता है, लेकिन जब एक बच्चा एक स्टेज पर पहुंचता है जहां उसे सॉलिड्स खाने होते हैं, तो वहीं बहुत से माता पिता कुछ ऐसा बना बना कर अपने बच्चे को खिलाते हैं कि उसे महसूस होने लगता है कि हाँ ये स्वाद है। अब जब बच्चा छोटा होता है, उस वक्त जब हम अलग अलग चीज़ों को बच्चे तक ले जाते हैं, उसे खिलाते हैं, हेल्दी फूड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक प्यारा सा आभास खाने के प्रति उत्पन्न होता है। बहुत से माता पिता हर कौर हर निवाला बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, लेकिन कुछ माता पिता बच्चे को स्वयं खाने के लिए प्रेरित करते हैं, एक साथ बैठ जाना और उसके बाद बच्चे की थाली में वही खाना रखना जो खाना आप खुद खाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे में खाने के संस्कार को उत्पन्न करता है। और जब बच्चा आपको खाते हुए देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये खाना है और इसे खाना है और इस तरह से खाना है। आप हाथ से खाते हैं तो आपका बच्चा हाथ से खाएगा, अगर आप चम्मच से खाते हैं तो बच्चा चम्मच से खाएगा। खैर, यहाँ मुद्दा ये है कि आप अपने बच्चे की डाइट को कैसे पहले से प्लान करें, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप जो खाएं वही अपने बच्चे को खिलाएं, जो खाना आपके प्लेट में हो वो उसकी प्लेट में हो, सब मिलजुल बैठकर जब खाएंगे तो बच्चों को खाने की आदत बनेगी। अब अक्सर हम बच्चों को ऐसे पदार्थ हाथों में पकड़ा देते हैं जिन्हें पकड़ाकर हमें लगता है कि हमने अपना दायित्व तो अपनी जिम्मेदारी खत्म की। जो बच्चे खाने पीने में आनाकानी करते हैं, हम सोचते हैं बच्चा कुछ तो खा ले, इसके पेट में कुछ तो जाए। यहां मुद्दा

कुछ तो जाने का नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि आपके बच्चे के पेट में कुछ ऐसा जाए जिसको खाने के बाद उसको स्वाद भी महसूस हो और कहीं ना कहीं उसके शरीर तक भी वो पौष्टिक तत्व पहुंचे जिनके लिए आप इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। कहते हैं कि शरीर का हर एक भाग अच्छे खाने के लिए तड़पता है, तरसता है, और जिस तरह से उसे वो खाना मिलता है, शरीर के उस हिस्से का विकास उस तरीके से होता चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर चाहे फैट्स हों, विटामिन्स हों, आयरन हों, मिनरल्स हों, सब कुछ ही तो महत्वपूर्ण है ना। तो हमें इस बात को अपने जहन में बिठा लेना है कि जो हमें खाना है वो बच्चे को खिलाना है, और जितनी कोशिश करनी है वो ये कि हमें बच्चों को बाहर के खाने से, पैक्ड फूड से, बचपन से ही दूर रखना है। क्योंकि जो बच्चे बाहर का खाना बचपन से ही खाने लगते हैं, फिर वो घर में खाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, वो ना नुकुर करने लगते हैं और आपको अपने पीछे भगाते हैं। आप एक एक निवारा लेकर उनके पीछे भागते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको कुछ और टेस्ट करा दिया है जो ज़्यादा चटपटा है, जो जीभ को ज़्यादा स्वाद दे रहा है। तो भाई जनाब, अभी आप पे निर्भर करता है कि आप अर्ली स्टेज से ही अपने बच्चे के खाने की आदतों को कैसे डेवलप करते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, खास तौर पर छोटे बच्चों को लेकर, साझा करूंगी ज़रूर। और सब माता पिता कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे तो जी बात होगी, लेकिन हम उसके लिए काम कुछ नहीं करते।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वैसे प्यार करते करते इतना प्यार करने लगते हैं कि बच्चे फिर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं और एक कहने लगते हैं कि आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, और बस बच्चों की बात सुनकर उनकी मन चाही चीज़ हम बाजार से लेकर उनको खिलाते हैं। अच्छी बात है, खिलाना भी चाहिए क्योंकि बच्चों को ज़िंदगी के हर रंग से रूबरू तो कराना है, लेकिन इसमें डिसिप्लिन को बिल्कुल नहीं भूलना है। हमें निर्धारित करना है कि कब बच्चे को कौन सी चीज़ खिलाई जाएगी। और कहते हैं कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, तो इस मेहनत की चाह को अपने बच्चे के अंदर भी हमें डेवलप करना होगा। अगर बच्चा फरमाइश करता है और ये कहता है कि आज आइसक्रीम खिला दीजिए, आज चिप्स का पैकेट ले आइए, आज ये कर दीजिए, आज वो खिला दीजिए, तो आप ना उनके आगे एक छोटी सी शर्त रखिए कि आज पेज एक पेज हैंड राइटिंग तुमने मुझे कर दिखा दी, या 10 दिन तक करके दिखा दी, या 10 पेज करके दिखा दिए, जो भी आप निर्धारित करें, तो मैं तुम्हें ये चीज़ खिलाऊंगा। लेकिन इसको भी आदत ना बनाए, ये तब कि जब बच्चा बहुत जिद करता है और कहता है कि नहीं मुझे तो खाना ही है, तो खाना ही है इसका तोड़ मैंने आपको बता दिया। कि बच्चे को एक टारगेट दीजिए और टारगेट देने के बाद उसकी मन चाही चीज़ हफ्ते में एक दिन के लिए निर्धारित कीजिए, लेकिन एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन खाने का भी होना चाहिए। कितने बजे खाना है, क्या खाना है,

प्लेट में रखी हुई हर चीज का स्वाद लेना है, पेट भर के खाना है। जब बच्चा पेट भर के खा लेता है तो उसका दिल जो है कुछ और खाने के लिए नहीं भटकता है। वैसे तो बच्चे चाहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहे। ये उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है जो भर पेट भोजन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें अपनी आदतों में शुमार करना होगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर बच्चे तक ब्रेकफास्ट पहुँचे, हेल्दी ब्रेकफास्ट पहुँचे, लंच के टाइम पर लंच और डिनर के टाइम पर डिनर। खाने का समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए। कितना खाना है, कैसे खाना है, ये तो आप अपने घरों में किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं इस बात पर निर्धारित करेगा। लेकिन आप टाइम टेबल अगर बना लेते हैं कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है तो ब्रेकफास्ट खाना ही है। अब देखिए आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैक्सिमम बच्चे देर से उठते हैं। अब देर से उठते हैं तो फिर देर से खाते पीते हैं और देर से खाते हैं तो पूरी दिनचर्या इसमें बदल जाती है। ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिन्हें बचपन से ही लागू कर हम अपने बच्चों को निर्धारित कर सकते हैं। और जैसे जैसे पढ़ाई बच्चों की आगे बढ़ती है ना, तो ऐसे में बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ हेल्दी बनाकर दे सकते हैं 3 मील्स के बाद भी, क्योंकि बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अक्सर ये चाहते हैं कि उन तक कुछ ऐसा पहुंचे कि वो बीच बीच में खाते भी रहें और पढ़ाई भी करते रहें। और क्यों ना करें। कहते हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका दिमाग स्वस्थ होता है, तो आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। और ये बच्चों के साथ भी होता है ना। पर हाँ, एक आदत जो आपने अपने बच्चों के अंदर डाल दी है बचपन से ही ना, उसके लिए अब आप कंप्लेन मत कीजिए। आप यही कहेंगे ना कि हमारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उनकी आदत जा ही नहीं रही। अब उस आदत का शुमार, उस आदत की शुरुआत भी तो आपने ही की है। कौन सी है वो आदत, बात करेंगे इस नगमे के बाद।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कन्याल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद में आज हम जिक्र कर रहे हैं कि क्यों, कैसे, किन बातों का हम ध्यान रखें, खास तौर पर जब हम बच्चों की डाइट के, उनके हेल्दी फूड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि आप उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा आहार, अच्छा पोषण ज़रूर पहुंचाएं। और वो कैसे होगा, जब आपकी किचन बहुत हेल्दी होगी, आपकी किचन में वो तमाम सामग्री उपलब्ध होगी जो सिर्फ हेल्दी फूड की ओर अग्रसर होगी। अब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे की प्लेट में सब कुछ होना चाहिए, दाल, रोटी, सब्जी, है ना, दूध, दही, मक्खन, तो अपने अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिसनर्स, अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए ऐसी बात कह रही हूँ। और अलग अलग तरीके हम ढूंढते हैं, कभी हम दाल का चीला बना लेते हैं कि बच्चे कुछ ना हो तो अपने टिफ़िन में दाल का चीला लेकर जाएं, इडली बना लेते हैं घर पे, और हम चाहते हैं कि बच्चों तक वो सभी पौष्टिक तत्व पहुँचें, इसलिए हम आयरन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, एक उम्र में बच्चे को सब कुछ चाहिए होता है, तो हम उसे वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं उसके आहार में, चाहे वो स्कूल का टिफ़िन हो या फिर लंच हो या हो हमारा डिनर, जो ज़्यादातर लोग अक्सर साथ बैठकर करते हैं, कि दिन में वर्किंग पेरेंट्स घर पर नहीं होते, दादा दादी घर पर हैं, तो बड़े प्यार से अपने हाथ से बच्चों को खिलाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बच्चा खाना पूर्ण रूप से खाए। अक्सर माता पिता देखते हैं कि बच्चों के टिफ़िन जो हैं वो वापस आ रही हैं, तो मदर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चे के टिफ़िन को कैसे हेल्दी बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के टिफ़िन में फ्रूट्स ज़रूर रखें,

नाइट्स से कहीं ना कहीं बच्चे को तरावट महसूस होती है, खासतौर पर जब गर्मियों का जिक्र होता है, गर्मियों की बात होती है, तो खाने का मन थोड़ा कम करता है। ऐसे में नॉन फ्राइड फूड हम अपने बच्चों के टिफिन में रखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं और खुश खुश होकर घर आते हैं, उनका टिफिन भी हमें खाली मिलता है। नहीं तो अक्सर जब टिफिन भरे घर आते हैं तो ज़्यादातर गृहिणियाँ यही कोशिश करती हैं कि फूड को, खाने को वेस्ट नहीं करना, वो खुद खा लेती हैं। क्या करें, हम मदर्स होती ही कुछ ऐसी हैं। तो हमें बच्चों की फूड हैबिट्स को पहले डेवलप करना होगा, जो हम खाएं वो उन्हें खिलाएं, उनको आदत डलवाएं कि इस निश्चित समय पर हमें खाना खाना है, उनकी प्लेट में हमेशा हेल्दी खाना हो, सब कुछ हो, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, यानी कि दाल हो और दही हो। रोटियों में अगर बच्चे घी लगाकर खाते हैं, ज़रूर आप उनको घी दें, और उनकी दाल में भी आप घी उन्हें दे सकते हैं तो उनको फैट भी मिलेगा। बच्चे क्योंकि दौड़ते भागते कूदते फांते रहते हैं तो यकीन मानिए उनका फैट वैसे ही सारा गल जाता है। लेकिन वो पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड, बाहर का खाना खिलाते हैं, उन बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और कहते हैं कि जब कोई समस्या घर कर जाती है तब फिर उसके लिए बच्चों से ये कहना कि अब आप मत खाओ या आप ऐसी चीज़ें खाओ जो हेल्दी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक जिम्मेदारी जिसे आज के पेरेंट्स को, यानी कि आज के जो यंग पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना होगा, वो ये कि हर माता पिता ये कहता है कि हमारा बच्चा बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना खाता ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मोबाइल फ़ोन का ये जो चस्का है बिल्कुल खाने के साथ साथ जो फोन को देखकर खाने का जो चस्का है, ये चस्का भी जनाब आप ही ने दिलाया है। एक तो आपके पास सहनशीलता का कम होना, और ऊपर से समय की कमी, और तीसरा बस आपका ये सोच लेना बच्चा खा ले, बस इसके पेट में कुछ चला जाए तो हम निश्चिंत हो जाएं, हम चैन की नींद सोएं। पर जनाब कहते हैं कि बच्चों के लिए ना आपको हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके खान पान पर भी अर्ली स्टेजेस में बहुत ध्यान देना होता है। अब हम करते क्या है, बच्चों को खिलाने के लिए अक्सर फ़ोन पर कार्टून्स लगा दिया करते हैं। जिस दिन आप बच्चे को कार्टून या मोबाइल फ़ोन नहीं देते हैं, मैं यकीनन इस बात को यहाँ दावे के साथ पेश कर सकती हूँ कि आपका बच्चा उस दिन खाना नहीं खाता। वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि वो जो इतना बड़ा सा मुंह खोल लेता है हर एक निवाले के लिए, वो उस निवाले के लिए नहीं, वो उस कार्टून कैरेक्टर के लिए, उस मोबाइल फ़ोन के लिए अपना मुंह खोल लेता है जिसके लिए वो तड़प रहा होता है। मुँह तो बस खुल जाया करता है। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल कहेंगे इसके पीछे एक तोड़ छुपा हुआ है, जोड़ छुपा हुआ है। तोड़ की बात तो बाद में होगी, पर पहले जोड़ छुपा हुआ है, क्योंकि बच्चा उस वक्त अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं है। उसको बस इतना मालूम है कि उसकी आंखें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, तरंगें उसकी आंखों तक पहुंच रही हैं, उसके मुँह के स्वाद से ज़्यादा उसको आँखों का जो चित्रण है, जो यानी कि उसकी आंखों तक पहुंचने वाली जो रोशनी है वो ज़्यादा आकर्षित महसूस होती है। तो सबकॉन्शियसली वो अपना मुंह खोल देता है क्योंकि उसके सामने निवाला आता है, और उस निवाले को बिना चबाए वो घूट जाता है। और आप सोचते हैं कि बच्चे ने खाना ख़त्म कर लिया, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो यही सबसे बड़ी गलती हमारी है। और फिर आगे चल के आप कहते हैं कि बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप उसे फ़ोन ले लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपना खाना खुद खाओ, अब हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यही होता है कि बच्चा खाना बंद कर देता है और आप बस कंप्लेन करते रह जाते हैं कि इन बच्चों के हाल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ये बच्चे बिना मोबाइल फ़ोन देखे खाना खाते ही नहीं है। जी ये बात एकदम सच है, आजकल मैक्सिमम बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाते। लेकिन इन चट्टे बट्टों की, जिनको आप कह रहे हैं ना कि हर बच्चे का हाल यही है, जिस घर में जाओ, जिस माता पिता से पूछो, यही कहते हैं कि हमारे बच्चों ने दुखी कर रखा है, खाना खाते नहीं है, मोबाइल फ़ोन के बिना तो इनके मुँह में एक निवाला नहीं जाता। पर इसका श्रेय जो है ना, इसका ताज, इसकी ताजपोशी केवल आपके, आपको करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये आदत भी तो हमने ही डलाई है ना। हम ही चाहते थे कि बस हमारा काम निपटे। बच्चों को खाना खिलाना कोई काम नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पेशेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, बच्चे को खाने के प्रति उजागर करना, यानी कि उसके अंदर वो रुझान पैदा करना कि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

अब भाई ये जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि हम अपने बच्चों के खान पान का पूरा पूरा ध्यान रखें, जितना हो सके बाहर का पैक्ड फूड बच्चों को ना खिलाएं, शुगरी कंटेंट जो है अपने बच्चों के खाने में कम से कम कर दें, खासतौर पर जब वो बाहर का हो। और कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए बहुत कार्य करना होता है, बचपन से ही अगर हम बच्चों के मन में इस बात को डाल देते हैं कि अगर अच्छा खाओगे तो ताकतवर बनोगे, निश्चित रूप से आपका बच्चा कल सही राह पकड़ेगा और सही राह पर चलेगा, फिर चाहे वो खाने की

और हेल्दी खाने के साथ साथ हमें ध्यान देना है अपने बच्चों के शारीरिक विकास के लिए। आप बच्चों को अच्छा खाने के लिए प्रेरित इसीलिए कर रहे हैं कि आपके बच्चे को कोई बीमारी ना हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे और जीवन में वो मुकाम हासिल करे जिसके लिए वो सपने देख रहा है। सपने देखने का हक हम सबको है, लेकिन उन सपनों के लिए हमें कार्य करना होता है। उसमें सर्वप्रथम हमारा स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम खुद भी योग करें और अपने बच्चों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। 21 जून को हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसके तहत हम आप सभी से हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि योग को अपने जीवन में शामिल कर आप एक स्वस्थ जीवन जिए। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है, अगर आप इसे करते हैं तो आप एक सुखद अनुभूति करते हैं। ताड़ासन योग का मूलभूत आसन है जो सीधे खड़े होने, शरीर का संतुलन बनाने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। ये संस्कृत के शब्द ताड़, जिसका अर्थ ताड़ का पेड़ या पर्वत है, और आसन यानी कि मुद्रा से मिलकर बना है। इसके लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों, पंजों व एड़ियों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाने के बाद हथेलियों को जांघों के पास सटा लें। अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से रखें। हाथों को ऊपर उठाएं, गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर हो। पूरे शरीर को खींचें, सांस अंदर भरते हुए हाथों, कंधों और छाती को ऊपर की ओर खींचें। इसके साथ अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल संतुलन बनाएं। स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और एड़ियों को जमीन पर टिकाएं। अब आप कहेंगे कि ताड़ासन करने के क्या फायदे होते हैं? तो जनाब, ताड़ासन करने के बहुत से फायदे हैं जिनका जिक्र यहाँ करना चाहती हूँ। सबसे पहले, इससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है, शरीर का पोस्चर सुधरता है, जांघों, घुटनों, पिंडलियों, टखनों को मजबूती मिलती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। पर याद रखें, यदि आपको घुटने या कूल्हे में दर्द है या कोई चोट लगी है तो इस आसन को ना करें। इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें चक्कर आने की समस्या होती है, वे भी इस आसन को ना करें। तो योग आपको हमेशा ये बताता है कि योग करने से, आसन करने से आपको कितने फायदे हैं, लेकिन योग में हमें एहतियात भी बरतनी होती है। कौन सा आसन हमारे लिए बेहतर नहीं है, या कहते हैं कि हर शरीर की ना अपनी अपनी कुछ एक बात होती है, हर शरीर की अपनी एक मांग होती है, हर शरीर किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा होता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम सर्वप्रथम अपने शरीर की सुने कि हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है। फिलहाल आपकी ये दोस्त गीतिका आपसे यहाँ इजाज़त लेती है, होगी आपसे फिर मुलाकात। बनी रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर हमें हरदम हर पल, और FM रेनबो पर गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।

0: Sok Swagar Health Centers de BP laga free check up treatment aro kau phal thakibo laga modop di ase BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-1166-660 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
0: kitu jankari NTEP bar di ase
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: FM 드래곤 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स। अपने खान सबके प्रोग्राम में स्वागत करिए से आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगबान 103 मेगाहर्ट्ज़ ते। अपने खान लगा होस्ट और दोस्त आर्जितम दिन लगो दे। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डिलाइटेड टू बी योर कंपेनियन फॉर द नेक्स्ट 70 मिनट्स एज वी टेक अ नॉस्टैल्जिक जर्नी थ्रू द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी म्यूजिक। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজি মই লাইন আপ করে কিনা থাকা মই লাগা প্লে লিস্টে থাকা গীত কান হইলে টাইমলেস ক্লাসিক্স কান থাকি আছে, হুইচ হ্যাভ এন্টারটেইনড জেনারেশনস উইথ দেয়ার আনফরগেটেবল মেলোডিজ, মিনিংফুল লিরিক্স এন্ড সোলফুল ভয়েসেস। আর এই টু এভারগ্রিন সংস কানি কন্টিনিউ টু হোল্ড আ স্পেশাল প্লেস ইন দ্য হার্টস অফ মিউজিক লাভার্স অক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেন টুডে। So my dear friends, sit back, relax and let the magic of Bollywood's golden years brighten your evening tonight. My dear friends, ami kanhi bishi geet yate huni hobo. Poila geet ani diyeche Ganya Dan film ra 1986 laga ekta film thaki ase, and this song remains one of Mohammad Rafi's most cherished romantic numbers. A beautiful reminder of the days when letters carried emotions across distance. Ami kan so bi yaad kori ase bola purana zamana de thaka gan ajikale dole sms whatsapp kan ahi jese oli bi pola dole ekdom letter pahe ami kan laga mon de bhapna gan ekjon ekjon ko de share kori thaka laga ami kan so bi to ke yaad kori.

My dear friends, एक ब्यार का नगमा है शोर फिल्म रापनी कन गीत हुनी तक इसे इतिहास में कन हुनी अबो 1969 साल का फिल्म अरथना रा किशोर कुमार और लता मंगेशकर वस्ते The soundtrack of Arathana played a major role in establishing Rajesh Khanna as Bollywood's first superstar. Ekta joyful melody celebrating the transformative power of love amikhan nitya huniyabo Kishor Kumar aru Lata Mangeshkar avaste music dise Esti Barman lyrics Anand Bakshi. Hunikita enjoy krubi my dear friends.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

वेल जी हाँ दोस्तों, आपका सुहाना संदेश शाम शुरू हो चुका है. यह है वेस्टर्न म्यूजिक एफएम ट्रकोपैन 103 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे वेरोनिका. लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया गीतों की बोछार. ऑलराइट. और यस दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दोस्त नहीं परिवार भी बन जाता है. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी के साथ छूटा तो किसी का साथ मिला भी होगा, है ना? और इसी दौर पर हम किसी के साथ हमारे वो सब शेयर करने लगते हैं, खुशियाँ बांटने लगते हैं, दुख में उन्हें याद करने लगते हैं. तो इस सुहाने संदे आज की सुहानी शाम पर अगर आपके जहन में भी किसी खास दोस्त का चेहरा भी आ रहा है तो ज़रूर चलिए और उनको ये गीत ज़रूर सुनाइएगा. डॉन विलियम्स की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा गीत, योर माई बेस्ट फ्रेंड.

वेल दोस्तों, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो सुनते ही हमें लगता है कि एक पुराने दोस्त के उस दोस्त के साथ फिर हमें मिलने का मौका मिल गया है, या फिर उसके साथ फिर बैठने का वक्त मिल चुका है हमें, है ना। ना बहुत तेज़, ना बहुत धीमे, बस दिल को एक सुकून सा दे जाता है। और संडे की इस खूबसूरत शाम में अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है, एक क्लासिक जो सालों बाद भी उतना ही ताज़ा लगता है। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और लुफ्त उठाइए। CCR, दिस इज़ हैव यू एवर सीन द रेन।

और दोस्तों संदेश शाम की ये महफिल यूं ही सजी रहेगी अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ। अगला गीत हमें ले चलता है एक सिंपल और केयरफ्री एहसास की तरफ, जहाँ यादें हैं, सफ़र है और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हैं। तो आइए इस क्लासिक गीत का लुफ्त उठाते हैं। ये है कॉटन फील्ड्स।

वेल दोस्तों, वक्त कितना भी तेजी से गुजर ना जाए, कुछ गाने और कुछ यादें हमेशा दिल के करीब रहते हैं, है ना? आई होप यू विल अग्री विथ मी। अब जो गाना आ रहा है उसमें है यादों की जो मिठास, दोस्ती की गर्माहट और गुजरे हुए लम्हों की खुशबू। संदेश शाम की इस सुकून भरे सफर में चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत क्लासिक, स्टनी बाय लोबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।